हरे हिरणमय वपोर धृत शंख चक्र ब्रह्मा मुरारे स्थिपुरंतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च।

एयर कूलर सिलिंग फैन स्टैंड फैन मिक्सर र आइरन को खरीद में एक्साइटिंग ऑफर पाउनुहोस् हरेक 15 दिन में क्रम्पटन को मिक्सर र बम्पर लक ड्रामा आइडिया डबल डोर रेफ्रिजरेटर जितने मौका पनि नागरिकता मात्र भए पुग्छ सहज ईएमआई मार्फत खरीद गर्न सकिन्छ

0: यो नया वर्ष को अवसर में सेंसई का होम अप्लायंस को खरीद में आकर्षक उपहार तथा कैश बैक। फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में 6 केजी एरियल, सेमी ऑटोमेटिक में 1 केजी एरियल, एयर कंडीशनर में इंस्टॉलेशन साथ इंस्टेंट कैश बैक पनी, र बम्पर में हीरो स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल। नागरिकता मात्र भए पुग्छ, सहज ईएमआई मार्फत खरीद गर्न सकिन्छ।
1: यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्क को। यो तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर।
2: काठमाडौँ उपत्यकामा रेडियो एनआरएन 99.1 ठाउँ ठाउँका रेडियो स्टेशनहरू र नेपाली नेटवर्क.com बाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाली खबर शुरू गरौं। पुटवलमा भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको वृहत प्रदर्शन सम्बन्धी खबरबाट, सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको नाममा वैकल्पिक व्यवस्था बिना सरकारले डोजर चलाएर उठीवास लगाएको भन्दै देशभरका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीले आज रूपन्देहीको बुटवलमा विशाल प्रदर्शन गरेका छन्। नेपाल भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित

0: शर्मा माइडिया का विभिन्न होम अप्लायंसर को खरीद में आकर्षक उपहार तथा कैशबैक साइड बाई साइड तथा मल्टी डोर रेफ्रिजरेटर में फ्री इंडक्शन फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में फ्री 6 केजी एरियल टॉप लोड में फ्री 2 केजी एरियल सेमी ऑटोमेटिक में 1 केजी एरियल डिश वॉशर में वॉशिंग टैबलेट र माइक्रोवेव ओवन में कुकिंग किट हरेक खरीद में शोर शॉर्ट किट र बम्पर में माइडिया 519 लीटर रेफ्रिजरेटर जितने मौका नागरिकता भए पुग्छ सहज ईएमआई मार्फत खरीद गर्न सकिन्छ
1: यो नयाँ वर्षको अवसरमा बेकोका विभिन्न होम अप्लायन्सहरूको खरिदमा क्याशब्याक तथा स्योर सर्ट गिफ्ट वासिङ मसिनमा 6 केजी एरियल म्याजिक डिस वासरमा वासिङ ट्याब्लेट एयर कन्डिसनरमा इन्स्टलेसन र फ्री स्ट्यान्डिङ ओभनमा प्रेसर कुकर नागरिकता मात्र भए पुग्छ सहज ईएमआई मार्फत खरिद गर्न सकिन्छ

0: ओ मेज्यू नमस्कार है।
1: नमस्कार नमस्कार मेज्यू नमस्कार।
0: ल बधाई छ है, बिहे गर्न लाग्नु भएछ।
1: ल धन्यवाद धन्यवाद मेज्यू। अनि बधाईले मात्रै त पुग्दैन है मेज्यू, जनता गएर छमी नाच्नु पनि पर्छ क्या।
0: खै मेज्यू, म त बिहेमा आउँदिन होला।
1: ल मेज्यू,

0: हाल्दो
1: लेट्स गो 6.9 इंच को शानदार डिस्प्ले एआई पावर्ड कैमरा 2 वर्ष को वारंटी सहित रेडमी A7 मा 5200 mAh तथा रेडमी A7 प्रो मा 6000 mAh पावरफुल बैटरी को साथ